सुप्रभात। मीडियो वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियावेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं हिंदी में समाचार जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के

0: सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमद्दाली बेर्दिकोरफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृवंदना के साथ, जो है समूह स्वर में।

सपनों से प्यारे देश हमारे मिटने न देंगे तेरी आन रे। समूह सुर में ये भी सुन रहे थे आप मातृ वंदना। वंदना कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब सुनते हैं उमाकांत रमाकांत गुंदेजा को।

अभी आप सुन रहे थे उमाकांत और उमाकांत गुंदेजा को। वंदना में आइए, अब करते हैं शिव जी को याद जगजीत सिंह की आवाज के साथ।

ये थे पंडित कुमार गंधर्व। वंदना में आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव शंकर जी की आरती।

ओम जय शिव ओंकारा। अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये आरती, और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है।

मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज जानकारी दी जाएगी गाय की उन्नत नस्लों के बारे में। श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ आप सुनेगा 6:40 पर और आज का चिंतन होगा 6:50 पर। 7:20 पर हिंदी महक के तहत सुनेगा वार्ता पतझड़ में भी संभव है वसंत, वार्ताकार होंगे राकेश कुमार अग्रवाल। फिल्म संगीतकार मिली जी सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे धारावाहिक गीत गाता इसका भाग दो। 9:10 पर आज कलाकार होंगे उर्मिला पांडे, आपसे सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत और लोकरंग कार्यक्रम लोकरंग के तहत। सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम के रचे कुछ फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आएंगे एक ही संगीतकार के तहत सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी होगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। 10:05 पर होगा सवरंग के तहत मिश्रित संगीत। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश किया जाएगा 10:30 पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, जो होगा आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में दिन में 11 बजे। 11:58 पर भोपाल से ही आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। आपकी फरमाइश कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति में हम लेकर आएंगे 12 बजे। यहीं से होगा स्वास्थ्य दर्पण, जिसका प्रसारण समय है दिन में 1 बजे। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत 1:45 पर।

शाम 5 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम में सवाल हमारे जवाब आपके। साथ ही होगी वार्ता परीक्षा के तनाव से बचने के उपाय। वार्ताकार होंगे कुलदीप मिश्रा।

0: विक्रम सिंह ही सुनेंगे शाम 5:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम लेकर आएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 6:00। 6:30 पर हमारे बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार होंगे बद्री प्रसाद खरे निरंकार और उनके साथी। आपसे सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत और लोक भजन। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे ग्राम सभा कार्यक्रम में श्रोताओं के फोन कॉल्स ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। आज की नसीहत होगी छाती में बाढ़ नैया। तो श्रोताओं ये तो थे आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। समय हो चला है खेती किसानी का।
1: भैयारो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं दुधारू गाय की प्रमुख नस्लन के बारे में। भैयारो अपने जो दुधारू गाय हैं इनकी जो अपने देश की खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सफल दुग्ध उत्पादन देवे वाली गाय हैं उनके बारे में आज हम उनका बताओ चाहू थे। जो जैसी गैया है उनके पालवे में सबसे बड़ा फायदा जो है भैया कि जे अपनी जो कठोर जलवायु है इका सहन करवे की क्षमता रखती है और जो अपने ते फालतू चारो है घास है उहा खाके भी अपनो जीवन यापन करती रहती हैं। सबसे बड़ी बात भी यह जा है कि जे बीमार सोई कम होती हैं और इनके दूध में घी की मात्रा ज्यादा होते है। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में जो खासतौर से गाय पाली जा सकती हैं उनमें भी यह प्रमुख जाति है गीर। कौन सी भैया? गीर प्रजाति है। जर नस्ल गुजरात के जूनागढ़ पश्चिमी राजस्थान उत्तरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इको रंग एक जैसो नहीं होता शरीर पे अलग अलग रंगन के धब्बा ई नस्ल की विशेषता है। इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में भी इनको एक फार्म है। इनको माथो ओबरो भाव होते है और एक दिना में दूध की जो क्षमता है वह 6 से 8 किलोग्राम तक ये दूध देती है। ब्यांत को अधिकतम उत्पादन 3175 किलोग्राम रिकॉर्ड करो गो है। दूध में बसा यानी घी 4.5% होते है। दूसरी प्रजाति है भैया साहीवाल प्रजाति। ई नस्ल के पशु अधिकांशतः भैया पंजाब दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इनको डील डोल बड़ो होते है और रंग लाल होते है। प्रति ब्यांत औसत उत्पादन 300 दिन में 2200 किलोग्राम तक पाओ जाते है। इनमें जो दूध होते है उमें 4.3% से लेके 6% तक घी पाओ जाते है। इनको अधिकतम जो ब्यांत को रिकॉर्ड उत्पादन है वो 4500 किलोग्राम तक पाओ जाते है। एक और गाय की प्रजाति है उहा अपन कहते हैं लाल सिंधी और जो नस्ल उड़ीसा तमिलनाडु बिहार हरियाणा पंजाब और दिल्ली में पाई जाते है। इको रंग गहरो लाल होते है और ब्यांत को औसत उत्पादन 1800 किलोग्राम है और इमें जो घी की मात्रा पाई जात व 5% पाई जात है भैया। एक और गाय की प्रजाति है व कहाउत है थार परकर। इको भी जो मूल स्थान है वो आजकल अपने थे हरियाणा गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये पशु ज्यादातर पाए जाते हैं। इनको रंग सफेद होते है और इनके दूध की जो उत्पादन क्षमता है वह एक ब्यात में 1815 से लेके 2720 किलोग्राम तक होते है। और कछु ऐसी गायें भी हैं जो उनके संकर प्रजनन द्वारा विकसित करी गई नस्लें हैं। इनके लाने अपन ने देखे हुए कि अगर अपन के घर में पर्याप्त हरो चारो है पशु चिकित्सा की सुविधा है तो संकर पशु सोई अपन का रखने हैं। इनके लाने विशेष ध्यान देने हैं कि जब कहूं तेज गर्मी पड़े धूप निकले तो इसे इन्हें जरूर बचाने हैं। कैसे भैया तेज गर्मी में जो हांपन लगते हैं और बीमार भी हो जाती हैं और इनकी खुराक सोई घट जाते हैं और दूध को उत्पादन भी प्रभावित होते है। इनके लाने जो सार होते ना वह बढ़िया साफ हो गए। पशुअन खान गर्मियन में अपन खान रोज एक गाय खान नहलाने आउत है और उनकी साफ सफाई को ध्यान रखने पड़ा थे। इन्हें रोजाना स्वादिष्ट और पौष्टिक हरो चारो भरपेट सोई देने पर दिया जब ही अपन संकर प्रजाति के पशु से अच्छा लाभ प्राप्त कर सके थे। इनमें एक प्रजाति और है भैया वह है कर्ण स्वस। कौन सी भैया? कर्ण स्वस। जब प्रजाति भैया ब्राउन स्विस सांड के बीर से साहीवाल नस्ल की जो गायें होती हैं उनमें प्रयोग करके ई

0: नस्ल को विकास करो वो है। इन पशुओं को जो रंग है हल्को भूरो और गहरो भूरो होते। ई नस्ल की गायें 2.5 साल की उम्र में पहली बार ब्यान दे देती हैं और एक ब्यात में औसतन 3,100 किलोग्राम तक दूध अपन देती हैं। एक और ऐसी भैया जो है नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो संकर प्रजनन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत की नस्ल है वह कहते हैं अपन कर्ण फ्रिज। ई नस्ल की गाय भी लगभग 2.5 साल की उम्र में अपना पहलो बच्चा देते है। ई को दुग्ध उत्पादन 3,900 किलोग्राम तक हो जाते है। फ्रिजवाल जो नस्ल की एक गाय है ईखा भी अच्छी तरह से अगर जो है राखो जाए तो ईको भी दुग्ध उत्पादन 3,200 किलोग्राम तक एक ब्यांत में मिल जाते है। तो ये जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं अगर कहूँ इनकी पर्याप्त देखरेख करके अपन दुग्ध उत्पादन ले हो तो निश्चित है कि अपन का फायदा हुई है।
1: अभी हमारे किसान श्रोता जानकारी ले रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत गाय की उन्नत नस्लों के बारे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। सुदेन श्री रामचरित मानस खान का संगीतमय पाठ, स्वर ए हरिहरन और सुरेश वाडकर का है संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्र द्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ एहरी हरन और सुरेश वाटकर की आवाजों में, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज का चिंतन।
1: बदलाव परिवर्तन की तो आजकल हवा ही बह रही है। घर के बड़े बूढ़े कहते हैं जमाना बदल गया है। कहां हमारा जमाना, कहां आज का। हर कोई चलती में है, किसी के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। वास्तव में देखें तो हर जगह बदलाव नजर आ रहा है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। मौसम में भी परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन में भी। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, इसे हम कहीं भी रोक नहीं सकते। हाँ, तुलनात्मक रूप से परिवर्तन अवश्य संभव है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब परिवर्तन ही जीवन का सत्य है तो हम इस परिवर्तन से इस कदर भयभीत क्यों हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमने प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों में बदलाव करने की ठान ली है। निरंतर कल कल करती नदियां हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सभ्यता का विकास भी इन्हीं नदियों के तटों पर हुआ है। समय के साथ साथ हमें अधिक जमीन की आवश्यकता हुई, हमने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई, कल कारखाने लगाए, लेकिन त्रुटि हमसे वही हो गई। जो पानी हमारे जीवन के लिए अमृत था, हमने उस पानी में ही अपना कूड़ा करकट मेला और कारखानों का अपशिष्ट प्रवाहित कर दिया। परिणाम पानी पीने के लायक ही नहीं बचा, अन्यथा गंगा यमुना जैसी पतित पावनी पवित्र नदियों की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। पहाड़ों के सीने को चीरकर हमने अपने यातायात के लिए मार्ग बनाए, पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाएं बनाई, लेकिन उन्हीं देशी विदेशी पर्यटकों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रखा। पॉलिथीन, बचा हुआ शेष खाना, अन्य कचरा पहाड़ों पर छोड़कर यात्री जाते रहे। परिणामतः पहाड़ों का अस्तित्व भी संकट में पड़ने लगा। प्रकृति का एक नियम होता है, वो एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से मुक्त रूप से हमें लौटाती भी है। यहाँ भयंकर गर्मी लू के थपेड़े हैं तो पृथ्वी की प्यास को शांत करने के लिए वर्षा की बूंदें भी हैं। उसके तो सबके लिए नियम एक जैसे ही हैं। जंगल केवल हमारी ही धरोहर नहीं, वरन सभी जीव जंतु, छोटे बड़े परिंदों की शरणास्थली है। लेकिन हम अपनी सभ्यता के विजय अभियान में इस कदर डूब गए हैं कि हमने जंगलों का ही सफाया कर डाला। जंगल, पहाड़, नदियों को नष्ट करने का परिणाम तो अब हमें भुगतना ही था। नदियों का रास्ता रोका, नदियों के लिए जब कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा तो नदियों ने अपना मार्ग स्वयं बनाया और रास्ते में पड़ने वाले सारे अवरोधों को नष्ट कर आगे बढ़ती गई। केदारनाथ की विभीषिका इसका ही एक रूप है। अपने जीवन को भौतिक रूप से संपन्न बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य हो गया। वृक्षों की कटाई हो या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, हमने अपने लिए कोई सीमा ही तय नहीं की। नदियों, तालाबों और जल स्रोतों का अंधाधुंध उपयोग किया। वर्षा एवं मानसून से पानी प्राप्त नहीं हुआ तो हमने धरती के सीने को चीर कर पाताल के पानी का भी उपयोग कर डाला। हर तरफ कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए और दूसरी तरफ जल स्रोतों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले के बने हुए अनेक तालाबों, नहरों, जलाशयों को यूं ही नष्ट कर डाला। पानी तो धरती से निकाला लेकिन पानी को धरती में पुनः पहुंचाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। हमने प्रकृति को दोष देते हुए कहा कि प्रकृति ने तांडव नृत्य किया है, नदियों, पहाड़ों ने हमें पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन ये करने के लिए बाध्य किसने किया? इसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बदलाव यहाँ संभव है। हम वृक्षारोपण करें। यदि हमने पानी का केवल अंधाधुंध उपयोग किया है तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम पानी को धरती में पहुंचा सकते हैं। हमें चाहिए कि ये प्रणाली केवल कुछ बड़े शहरों में सीमित न रहे।

0: बल्कि सरकार द्वारा हर नए एवं पुराने भवनों में इसे लागू करने की अनिवार्य शर्त रखी जाए। थोड़ा सा खर्च हमारे जीवन को संवार सकता है। जल स्रोतों की सफाई के ऊपर भी ध्यान देना होगा। केवल तन की सफाई पर ही हम केंद्रित न हो, वरन हमारा घर, मोहल्ला, शहर और देश को भी सफाई का तोहफा दे, क्योंकि यदि हम सुथरे तो ही पूरा चक सुथरेगा।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 24:55 होने वाले हैं। जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, सबसे पहले संस्कृत में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगति अभवत्।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभाञ्च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री

0: यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति। यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज

शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से एक गुना नहीं, दो नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
0: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और

0: फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
2: इंदिरा जाटव ने वर्ष 2016 में समूह गठन की प्रक्रिया से जुड़कर बांकड़े बाबा स्व सहायता समूह का गठन किया और समूह की अध्यक्ष बनी। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल गढ़वे सिलाई के माध्यम से आय अर्जित की। महिला इंदिरा जाटव ने बताया कि वे पहले मजदूरी और कृषि कार्य करती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई है।
3: महिला समूह से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण प्राप्त करने से मेरी आय बढ़ गई है।
2: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के DPM डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि
4: जो हमारे समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में इंदिरा जाटव किया है और वो 12,500-13,000 रूपए प्रति माह कमा रही है, और जो प्रधानमंत्री का सपना था कि लखपति दीदी बने, तो वो लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ चुकी है।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सौंपी गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर MP के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से MP टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिलाजुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश की शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और SDRF के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3 करोड़ 41 लाख रूपये का राजस्व अर्जित कर

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा, 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाश
2: मीडिया वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। सुनते हैं हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता, पतझड़ में भी संभव है वसंत। वार्ताकार हैं राकेश कुमार अग्रवाल।
3: हाथ में छड़ी, आंखों पर चश्मा और झुकी हुई कमर, बुजुर्गों के नाम पर अक्सर कुछ ऐसी ही तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। लेकिन मैरी एलिस ऐसे बुजुर्गों में शामिल नहीं है। ना तो उनके हाथ में छड़ी है और ना ही उन्हें चश्मा लगाने की कोई जरूरत है। उन्होंने तो 100 साल की उम्र में विमान उड़ाकर बुजुर्गियत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैरी ने 2 फरवरी को अपने जन्मदिन पर विमान उड़ाकर इस दिन को और खास बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह ब्रिटेन की महिला पायलटों में शामिल थी। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। रूस के रेजान शहर स्थित सिटी हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर समाज के लिए नजीर पेश कर रही है। जिस उम्र में लोग घर पर आराम करते हैं, नाती पोतों को खिलाते हैं या फिर हरी भजन करते हैं, उस उम्र में वह रोजाना 4 ऑपरेशन कर रही हैं। एला इलिन निचना लेवुशिना नाम की इस डॉक्टर की उम्र 90 वर्ष है। वह पिछले 68 सालों से मरीजों के ऑपरेशन कर रही हैं। अब तक उन्होंने 10,000 से अधिक ऑपरेशन किए हैं। इस उम्र में भी एला के ऑपरेशन करते समय न हाथ कांपते हैं न ही वे फीस लेती हैं। उन्होंने 30 साल सरकारी डॉक्टर के रूप में बिताए हैं। उससे मिल रही पेंशन से उनका खर्च चलता है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डेविड गुडाल, उनकी उम्र लगभग 102 वर्ष है। जब वह पर्थ के एडिथ कोवान विश्वविद्यालय ने उन्हें यह फरमान सुनाया कि इस उम्र में वह आप कैंपस आकर नहीं पढ़ा सकते, तो वे सन्न रह गए। उन्होंने इस फरमान का विरोध जताया तो जनता भी उनके साथ खड़ी हो गई। 1941 में इंपीरियल कॉलेज से PhD करने वाले गुडाल 2 बसें और 1 ट्रेन के जरिए 90 मिनट का सफर कर कैंपस पहुंचते हैं और अकादमिक कामकाज निपटाते हैं। शोध छात्रों को अहम सलाह देते हैं। विश्वविद्यालय ने उनकी सेवा 3 साल और बढ़ा दी है। उन्होंने लोहा स्थित रेड ऑक नगर हवाई अड्डे से 1 घंटे की उड़ान भरी। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक उम्र के पायलट के रूप में उनका नाम दर्ज कर लिया गया। उक्त सभी प्रसंग कपोल कल्पना नहीं बल्कि बुढ़ापे व उम्र को मात देते ऐसे व्यक्तियों के जीवन के सच्चे किस्से हैं जो मीडिया की सुर्खियां बने। उन शख्सियतों को बूढ़ा कहा जाए या न कहा जाए, यह भी बहस का विषय हो सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्दों में अगर हम कहें कि हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि हम इसलिए बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। बुढ़ापा दरअसल है क्या? बढ़ती उम्र के साथ शरीर का शिथिल होना, स्नायु तंत्रों का कमजोर होना, शरीर के विभिन्न अवयवों व अंगों का सुचारू रूप से काम न करना, चेहरे पर झुर्रियां, झुकती कमर, बालों की सफेदी व नजर कम होना बुढ़ापे के सामान्य लक्षण हैं। जॉर्ज बंस कहते हैं कि आप उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपको उम्र के साथ बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक जीवन चक्र है। बाल्यावस्था

किशोरावस्था, युवावस्था व प्रौढ़ावस्था इस सफर के पड़ाव हैं। कौन कितने पड़ावों को पार कर पाएगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या हम इन पड़ावों को खूबसूरत या यादगार नहीं बना सकते? किसी शायर ने सच ही कहा है कि मौत तो उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। इसका मतलब साफ है कि क्यों ना हम अपने बुढ़ापे की तैयारी करें, इसे कैसे और खूबसूरत और भी कारगर बनाएं, ताकि मरते दम तक इंसान की प्रासंगिकता बनी रहे। इसके लिए सबसे मूलभूत तत्व है सक्रियता। इसी सक्रियता को अगर इंसान बरकरार रखे तो शरीर भी चुस्त दुरुस्त बना रहता है। इसमें अगर सक्रियता के साथ साथ जिंदा दिली का छौक हो तो फिर कहने ही क्या। कहा भी गया है, जिंदगी तो जिंदा दिल जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रदर्शन का उनकी उम्र से सीधा रिश्ता माना जाता है। टेनिस जैसे खेल में 30 वर्ष की उम्र आमतौर पर ओवरएज के रूप में शुमार की जाती है, लेकिन रोजर फेडरर से लेकर भारत के लिएंडर पेस, इन्होंने तो जैसे उम्र को ही मात दे दी है। लिएंडर पेस ने तो 44 वर्ष की उम्र में भी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 37 वर्षीय रोजर फेडरर ने युवा राफेल नडाल को पराजित कर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत इतिहास रच दिया। जड़ इच्छा शक्ति यदि इंसान में हो तो ढलती उम्र भी युवा जोश पर भारी पड़ती है। हेनरी फोर्ड ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने सीखना छोड़ दिया हो बूढ़ा है। अपने मस्तिष्क को युवा रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों में पहले जैसा जोशो खरोश, जुनून, उत्साह भी फना हो जाता है। जबकि यहाँ सवाल बालों के सफेद होने या चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों का नहीं है। जौहरा सहगल जैसी अदाकारा मरते दम तक अभिनय की दुनिया से जुड़ी रही। 102 वर्ष की उम्र में जब 2014 में उनका निधन हुआ, इसके पहले ना वो कभी थकी ना अपने काम से ऊबी। 98 वर्षीय पारी खेलने वाले अभिनेता अवतार कृष्ण हंगल, जिन्हें हम सभी एके हंगल के नाम से जानते थे, निधन होने के पहले तक 2012 तक छोटे पर्दे पर अभिनय से जुड़े रहे। काम करने की लगन, लगातार व्यस्त रहना व नया कुछ ना कुछ करते रहना बढ़ती उम्र में भी इंसान को जीने की वजह दे जाता है। सैमुअल उलमन ने कहा है कि कोई भी कुछ साल जी लेने से बूढ़ा नहीं होता, बल्कि हम तो बूढ़े होते हैं अपने आदर्शों का परित्याग कर देने से। साल शायद हमारी त्वचा पर झुर्रियां लेकर आते होंगे, लेकिन उत्साह को त्याग देना हमारी आत्मा पर झुर्रियां ले आता है। अमिताभ बच्चन जैसे अदाकार 75 वर्ष की उम्र में भी शोरशी बालाओं के साथ निःशब्द जैसी फिल्मों में लीड करेक्टर निभाते हैं। ढलती उम्र के बाद भी न उनकी फिल्मों की संख्या में कमी आई, न उनका जादू कम हुआ। आज भी वे उतने ही उत्साह व ऊर्जा के साथ अभिनय करते हैं जितना 70 के दशक में एंग्री यंग मैन के रूप में उनका बॉलीवुड में डंका बजता था। बुजुर्गों की सक्रियता न केवल उन्हें बीमारी से बचाती है, बल्कि घर परिवारों में, रिश्तों में प्रगाढ़ता भी लाती है। बच्चों द्वारा बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में भेजे जाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लग सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि मैं उस व्यक्ति पर दया नहीं करता जो कठिन परिश्रम करता है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उन पर दया करता हूँ जो काम नहीं करते, चाहे वो खुद समाज को जिस स्तर पर समझे। थियोडोर रूजवेल्ट का कथन स्पष्ट करता है कि वे कठिन परिश्रम व काम के कितने बड़े हिमायती हैं, और यही तो हमारी गीता का भी ज्ञान है। बढ़ती उम्र गणित की दृष्टि से महज संख्या का मामला है। बेहतरीन जीवन शैली, उत्तम आहार, नियमित व्यायाम और खुश मिजाजी से इंसान ताउम्र स्वस्थ, जवां और सुंदर बना रह सकता है। कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के हिमालय पर्वत श्रृंखला पर बसे हुंजा के लोगों की औसत उम्र 110 से 120 वर्ष तक मानी जाती है। माना जाता है कि कई लोग तो 150 वर्ष तक भी जीवित रहे हैं और चलते फिरते दुनिया से विदा हो गए। ये लोग कम खाते हैं और पैदल ज्यादा चलते हैं। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक का चलना और टहलना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है। यहाँ की महिलाएं 65 साल की उम्र में भी संतान को जन्म दे सकती हैं। जीवन को नया आयाम देने के लिए इंसान को चांद तारे तोड़कर लाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम कब बड़ा रूप और कब बड़ी पहचान बना देते हैं पता नहीं चलता। दक्षिण अफ्रीका के 90 वर्षीय मॉरिस क्रेसविक 18 वर्ष के थे, एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। किसी अजनबी के खून से नई जिंदगी पाने वाले क्रेसविक अब तक 413 पॉइंट रक्तदान करने वाले क्रेसविक को नियमित रूप से सर्वाधिक रक्त देने वाले व्यक्ति के रूप में वर्ष 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। जीवन एक तैयारी का नाम है। जीवन जीना बेमतलब, बेपरवाह, बेलॉस, बिंदास जीना नहीं, बल्कि किसी मकसद से जीना,
किसी लक्ष्य का पीछा करना है।

0: गीता में कहा गया है, या निशा सर्वभूता नाम तस्या जागृति संयति। हमारी आंखें भले बंद हों पर चेतना का लोप ना हो। पौंडिचेरी आश्रम में श्री माँ प्रवचन के पहले अपने श्रोताओं से एक प्रश्न करती थी, आर यू रेडी, यानी क्या तुम तैयार हो। इस तैयारी से उनका तात्पर्य सजगता से था। ड्वाइट एल मूडी कहते हैं कि बुढ़ापे की तैयारी किशोरावस्था से ही शुरू हो जानी चाहिए। ऐसी जिंदगी जिसका 65 साल तक कोई उद्देश्य न रहा हो, वो अचानक सेवानिवृत्ति के समय सार्थक नहीं हो जाएगी। नई शुरुआत आप कभी भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं। कैथरीन ग्राहम ने कहा है कि कोई उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकता, पर अपनी उत्पादकता बढ़ाते हुए उम्र दराज होना कुछ और ही बात है। आपके पास अगर देने के लिए कुछ है तो आप हमेशा न केवल अपने को बल्कि अपने वजूद को भी बचाए रहेंगे। यहाँ देने का तात्पर्य धन दौलत से नहीं है। दुनिया में जब तक है तब तक क्यों न हम जिंदगी को नए मायने दें, ताकि हमें आत्मसंतोष के साथ साथ हमारे दिल में एक सुकून भी हो। लॉरेन बैकाल के शब्दों में, मेरा सोचना है कि आपकी पूरी जिंदगी आपके चेहरे में दिखाई देती है और आपको उस पे गर्व होना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता पतझड़ में भी संभव है बसंत। वार्ताकार थे राकेश कुमार अग्रवाल। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये शुरुआती नगमा भी आप सुन रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर के साथ संजीदा आवाज के धनी मुकेश की थी। गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब ये अगला गीत।

प्यार का वादा 50-50। ये शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कुछ और गीत लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिर सुबह होगी। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मुकेश और आशा भोसले को। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत खयाम का था। यह अगला गीत आखिरी खत से लिया है। आवाज है भूपिंदर की, कैफी आजमी की शब्द रचना है और संगीत एक बार फिर से खयाम का।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र को फिल्म आखिरी खत में। गीत कैफे आजमी का था और संगीत खयाम का। दिल को सुकून देते फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

खयाम के संगीत निर्देशन में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। आवाजें थी मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर की और शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। और अब ये अगला गीत

प्यार का बंधन टूटे ना, मोहब्बत से लवरेज ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म शोला और शबनम से आवाजें थी मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की। गीत कैफी आजमी ने लिखा था और संगीत था खयाम का। और देखिए श्रोताओं, आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर फिल्म संगीत के। सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अंदाज मेरा मस्ताना। ये शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। और श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत को फिलहाल देते हैं विराम। कुछ और फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:30 पर, लेकिन वो होंगे संगीतकार प्रीतम के संगीतबद्ध किए हुए। मेरे वेब 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र।

0: एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का

0: लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए।

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112311 7171 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस

मीडियम वेव 444 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए सुनते हैं धारावाहिक गीत गाथा का दूसरा भाग।

उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं। जब इनका कसाव इतना हो जाए कि मनुष्य का दम घुटने लगे, तब वो इस आवरण को उतार फेंकने के लिए सबसे अधिक समर्पित होकर प्रस्तुत होता है। अर्जुन की इसी व्याकुलता के समय भगवान ने आत्मा की विवेचना कर उनके मन पर जमे आवरण को हटा ज्ञान निष्ठ कर्म तथा स्थित प्रज्ञता का उपदेश दिया है। सांख्य योग नाम के द्वितीय अध्याय में

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। श्रोताओं, आपको याद दिला दें 9:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे एक ही संगीतकार के तहत प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम के संगीतबद्ध किए हुए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश किया जाएगा 10:30 पर, तो बने रहेगा आकाशवाणी छतरपुर के साथ।

मीडियमवेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। समय हो चला है कार्यक्रम लोक रंग का। आज कलाकार हैं उर्मिला पांडे, आपसे सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत और लोक भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बन्नी लोकगीत के साथ।

उर्मिला पांडे की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये बन्नी लोकगीत। चलिए लोकगीतों की अगली विधा चौकड़िया सुनते हैं उर्मिला पांडे को।

चौकड़िया अभी आपने सुना उर्मिला पांडे की आवाज में। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में और बुंदेली लोकगीत आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है। चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे सोहर लोकगीत। और श्रोताओं, इसके साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे हमारे बुंदेलखंड की मशहूर बुंदेली गायिका उर्मिला पांडे की आवाज में कुछ बुंदेली लोकगीतों की विभिन्न विधाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। समय हो चला है एक ही संगीतकार का। श्रोताओं, आपको बता दें आज

ये संगीतबद्ध किए हुए गीत आपको हम सुनवाएंगे, वो हैं मशहूर संगीत निर्देशक प्रीतम चक्रवर्ती, जिन्हें हम सभी प्रीतम दा के नाम से जानते हैं। ये एक प्रमुख भारतीय संगीतकार और गायक हैं जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें 2001 से ये इस फील्ड में आए हैं, तभी से काम कर रहे हैं और अभी भी लगातार हम सभी के बीच एक से एक प्रस्तुतियां, एक से एक गीत हम सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। हालांकि वे मुख्य रूप से एक संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने लोकप्रिय गाने भी गाए हैं। करते हैं प्रीतम दा के बारे में बहुत सारी बातें और सुनते हैं उनके रचे हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

धूम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और सौम्या राव की आवाज में। संगीत जैसा कि आपको पता है प्रीतम दा का है और इस गीत को रचा था समीर ने। श्रोता आपको बता दें बंगाली संगीत परिवार में सन 1971 14 जून को कोलकाता में जन्मे प्रीतम के पिता प्रबोध चक्रवर्ती खुद एक संगीत विद्यालय चलाते थे जिससे उन्हें बचपन से ही सुरों की समझ मिल गई थी। आपको बता दें संगीत के तकनीकी समझ पाने के लिए प्रीतम ने 1993 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे से साउंड रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। फिल्म जगत में कदम रखने से पहले वो जोधपुर ग्रह पाखी नाम के बांग्ला बैंड का हिस्सा भी थे और लोकप्रिय बांग्ला बैंड चंद्रबिंदु से भी जुड़े रहे। सफलता की शुरुआत आपको बता दें तो उन्हें संजय गद्वी की फिल्म मेरे यार की शादी है 2002 से पहचान दी, लेकिन धूम 2004 में जो की आई थी उसके गानों ने तो बॉलीवुड में धूम मचा दी और प्रीतम दा को स्थापित कर दिया। चलिए बढ़े करते हैं और सारी बातें, लेकिन सुनते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये अगला गीत।

शदा प्रीतम का रचा हुआ ये मस्ती भरा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म नक्श से। आवाज थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल, साथ में थे बहुत सारे उनके साथी। श्रोता आपको बता दें कि प्रीतम दा बहुमुखी संगीत इन्होंने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया। उन्होंने गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, जब भी मैट, बर्फी, जग्गा जासूस और दंगल जैसी फिल्मों से रॉक, जैज, बोसनोवा और सूफी रॉक को भारतीय संगीत में पेश किया। हम सभी ने जाना कि ये किस तरह के संगीत होता है। उनके काम करने का तरीका एकदम ही अलग था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काम सीमित कर दिया, लेकिन वे 2011 से 2020 के दशक के सबसे विपुल संगीतकार रहे। और आपको बता दें लगभग 300 से भी अधिक गाने प्रीतम दा ने रचे। चलिए सुनते हैं उन्हीं का रचा ये अगला खूबसूरत सा गीत।

0: लम्हा लम्हा, ये गीत अभी आपने सुना अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म गैंगस्टर अ लव स्टोरी से। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार कार्यक्रम और आज के संगीतकार हैं प्रीतम। प्रीतम के संगीतबद्ध की एक चुनिंदा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गीत सुनवाएं लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रेडी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमृता काक और मीका सिंह की आवाज में। गीत को लिखा था आशीष पंडित ने। श्रोताओ, आज आप सुन रहे हैं मशहूर संगीतकार प्रीतम के रचे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आपको बता दें कि प्रीतम हालांकि मुख्य रूप से एक संगीतकार, एक कंपोजर के रूप में हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उन्होंने कर ले मुझसे प्यार फिल्म तो बात पक्की और खुदा ना करे जैसे गानों को भी अपनी आवाज दी है। यानी इन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें अपनी आवाज में गाया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि प्रीतम को या अली जैसे गानों के लिए अपार लोकप्रियता मिली, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें उस समय तक कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला था, जबकि उन्होंने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गाने रचे थे। ये बात तो सच है श्रोताओं, उनके रचे गीत उस समय जितने लोकप्रिय थे, आज भी हम उनको बहुत ही चाव और बहुत ही सुकून के साथ सुनते हैं।

अफगान जलेबी। ये गीत अभी आप सुन रहे थे असरार और साथियों की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, आपको बता दें, प्रीतम इनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ पश्चिमी धुनों का अनूठा मिश्रण है। पुरस्कार की जहां तक बात करें तो उन्हें बर्फी, जो कि 2012 में आई थी, उसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। साथ ही फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिप के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं जो पुरस्कार उन्होंने अपने खाते में दर्ज किए। चलिए बढ़ें और सुनते हैं उनका संगीतबद्ध किया ये प्यारा सा गीत।

0: एक बार यहाँ आ भी जा। राता फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत प्रीतम का था और अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को रचा था। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे एक ही संगीतकार कार्यक्रम के तहत मशहूर गायक, वादक और संगीतकार प्रीतम के रचे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र, जिले की चिट्ठी। चलिए आइए सुनते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बस कुछ ही देर में।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी, आलेख वेद प्रकाश शर्मा का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश

शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रुपए की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46,00,000 रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, संपवेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गांव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जांच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केन्द्र

0: राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जांच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रहे हैं। विदिशा जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। गोड़खेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक KG राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गांव के किसान विपुल श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौर ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुद्धनी प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। पीएम विश्वकर्मा योजना से 1,00,000 रुपए का कर्ज लेकर भारत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर ने गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा RBSK योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आइए सुनते हैं सबरंग के तहत मिश्रित संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पुष्पा पागधरे के इस भजन के साथ।

मेरे मन में बसे गिरधारी, पुष्पा पागधरे को अभी आप सुन रहे थे। मिश्र संगीत में आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल। मिश्र संगीत में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे थे मोहन कंथरिया का गीत। आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं सबरंग के तहत मिश्रित संगीत, जिसमें है गीत, भजन, गजल, धुन और फिल्मी गीत। इसी फहरिस्त में चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ये फिल्मी धुन, आप तो पहचान गए होंगे। वैसे बता दें आपको, गाइड फिल्म की ये मशहूर गीत तेरे मेरे सपने, ये इस गीत की धुन अभी आपने सुनी। और चलिए मिश्र संगीत के कार्यक्रम के आखिर में आपके लिए लेकर आए हैं ये फिल्मी गीत।

आंखों से जो उतरी है दिल में। आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिर वही दिल लाया हूं, जो कि आई थी 1963 में। श्रोता, इस गीत के साथ ही सबरंग के तहत मिश्रित संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र।

मीडियमवेव और न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। आपको इंतजार होगा अपने मनपसंद कार्यक्रम जो कि है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो आपकी पसंद कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आपके श्रोताओं, हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त सविता मिश्रा, आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, कहते हैं कि बातचीत, जी हां, बातचीत यूं तो शब्द ही है पर की जाए तो दिलों के कई मैल धुल जाते हैं। बिल्कुल सहमत होंगे आप लोग भी हमारी इस बात से कि बातचीत एक इतना अच्छा माध्यम है कि आप अपने मन के, अपने दिल की जितनी भी बातें हैं आप किसी से अगर साझा करते हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हल निकल आएगा। तो बस बातचीत में कभी पाबंदियां मत लगाइए, बातचीत करते रहिए अपनों से। और हमारी और आपकी, श्रोताओं की जो बातचीत होती है वो होती है ईमेल के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से, तो ये जो अपना संबंध है इसको भी आप बरकरार रखिएगा। चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम में अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ। किसने पसंद किया है, किस फिल्म का है, ये सारी बातें इस गीत के बाद आपको बताते हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम का ये शुरुआती नगमा भी आपने सुना, फिल्म पाताल भैरवी से आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीत इंदिवर का और संगीत पप्पी लहरी का। और इस मस्ती भरे गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से, हिंगोली महाराष्ट्र से ये मेल है हम तक, शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, अंबेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज तमदाड़े और उनके परिवार के सभी सदस्य, अड़ार नादगा घाट छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये और उनके परिवार के सभी सदस्य ये श्रोता हैं। फाजिलका पंजाब से पूरा खेड़ा परिवार है, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी, आरबी, जीवन सिंह बुक्स और समस्त खेड़ा परिवार। इसी गीत को पसंद किया था गांव खारिया ठाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सदवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। ये मेल हम तक आया है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद्र, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक ये श्रोता हैं हमारे ग्राम लोहरी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से।

जैन जिनेन्द्र के साथ ये श्रोता लिखते हैं, महाराष्ट्र से इनका हम तक मेल पहुंचा है। ये हैं रूपेश, संघई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार। तो श्रोताओं, आप इसी तरह से आकाशवाणी छतरपुर के साथ हमेशा बने रहिएगा और अपने मेल और पत्र अपनी पसंद इस दोनों ही माध्यम से हम तक भेजते रहिएगा। तो चलिए, आप सभी की पसंद हुई पूरी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से, आशा भोसले की आवाज है। श्रोताओं, एक बात बता दें आज के कार्यक्रम की कि जितने भी गीत जो आपकी पसंद के हैं इतने मस्ती भरे हैं कि आप अपने आप पर काबू नहीं पाएंगे, यानी कि आपके जो पैर हैं थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं विश्वास होता है तो बने रहिएगा आज के इस कार्यक्रम में और सुनिए ये अगला गीत।

जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जा। साथियों ये गीत अभी आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म से, आशा भोसले की आवाज थी और संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं, ये मेल है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, ग्राम मुन्ना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी गीत को पसंद किया था हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस बोर्ड, सीताराम और साहिल कांगड़ा। ये हैं जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से श्रोताओं, बड़ी दूर से हमारे श्रोता अपनी पसंद भेजते हैं, बड़ी ही खुशी होती है। तो चलिए ये महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी और समस्त जायसवाल परिवार, एकता कॉलोनी रोहतक से बबीता वोट, निखिल और तन्वी। ये अगला पत्र है हम तक लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, पसंद करने वाले हैं कमल कांत मराबी, प्रमला मराबी, नेहा मराबी, पुष्पराज, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्य। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत वाणकर, राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बल्लापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन और टुक टुक। ये पत्र आया है हम तक शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ से, पसंद करने वाले श्रोता हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। तो श्रोताओं आप सभी ने सुना अपनी पसंद का गीत आशा जी की आवाज में फिल्म नमक हलाल से। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सविता मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लूटमार फिल्म से, आवाज आशा भोसले की है, पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर बिस्क बिरक, जेतेक बिरक, मीका बिरक और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं डोंडी लोहार बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी तामुरिया, राधिका प्रभा तामुरिया, मास्टर अल कबीर और टिकीर में टा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुकमणी शर्मा, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनोरी तेलीबाला से ये मेल हम तक आप लोगों ने भेजा है। एक पत्र है श्रोताओं इसको उठाते हैं हम, ये आया है कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, श्रोता हैं यूनिस खत्री, शफीक खत्री, इदरीस, नूर मोहम्मद, कासिम हासिम, इरफान मीना और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं गुमला झारखंड से एस एन जावेद और शगुफ्ता अंजुम। तो चलिए श्रोताओं पत्र और ईमेल इस तरह से आपके हमें प्राप्त हुए, आप सभी ने सुना चाहे लूटमार फिल्म का गीत आशा जी की आवाज में।

जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लूटमार फिल्म से इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी बिट्टू, सादा हिना कौसर और उनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को पसंद किया था। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित एवं वैभव मट्टू, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रीश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और उनके परिवार के सभी सदस्य ये श्रोता हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु फिल्म कुर्बानी फिल्म का गीत आप लोग सुनना चाहते हैं, ये कुछ मेल हम तक और आए हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, ये हैं गांव जाखूत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और उनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, ये हैं दादा बाबू रोड गिरडीही झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। तो चलिए श्रोताओ, आप सभी के मेल हुए शामिल। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कुर्बानी का ये गीत। आवाज है नाजिया हसन की।

कुर्बानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नाजिया हसन की आवाज में। और श्रोताओ, चलिए आ गए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम, जो कि है आपके ही पत्रों और ईमेल पर आधारित। इस कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में। इस आखिरी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता इस तरह से हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और उनके परिवार के सभी सदस्य, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, मुल्लापुर डाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र जैन और आपके परिवार के सभी सदस्य, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीतीश सुरभि, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह और उनके सभी मित्रगण। एक मेल है, ये आया है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या रामटेके और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये मेल है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या, अन्नु गोस्वामी, ये श्रोता है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। एक आखिरी मेल और श्रोता हम उठा लेते हैं, ये है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज और उनके सभी मित्रगण। तो चलिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं आपकी पसंद।

0: सारा जमाना हसीनों का दीवाना, याराना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा था श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कॉकटेल फिल्म का नखमा भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। गीतकार थे इरशाद कामिल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

चांदनी फिल्म के नखमा आपको सुनवा रहे हैं तमिल मंगेशकर और बाबला की ये आवाजें हैं, आनंद बख्शी की बोल है शिव हरे की तर्ज़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रीय सोमनाथ

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरो

0: aerobatic team, the Suryakiran aerobatic team, SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Suryakiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा, और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्ष स्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव है। और
0: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
1: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
1: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है।

0: विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व

0: में भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सके। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सके। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सके और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: In Himachal Pradesh, six tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. Four others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad.

0: Gujarat Government Medical College. Among the deceased, five were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो

0: क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठराग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवन लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपने एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुईदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में

0: जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, ये भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं, इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए, जैसे गाय है तो एक अंग है भगवान का, एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है, अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं, तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है। अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका

0: The Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहां पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and

0: Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp has been now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
0: होंगी। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: Jai Somnath.

गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ।

साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे

सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए

राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे

मनीषी उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से

सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक

सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाए जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत

0: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया।

लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। केदारनाथ फिल्म का ये गीत है, अमित त्रिवेदी की आवाज है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की और अमित त्रिवेदी की।

सत्यम शिवम सुंदरम। अगली प्रस्तुति इस फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की हैं, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ गीत और भजन। कलाकार हैं प्राची कोकण ठानकर।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्राची कोंकण ठानकर की आवाज में कुछ गीत और भजन।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक

0: संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कुनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कुनू में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कुनू श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। लगभग 5000 किलोमीटर में इनका बसेरा हुआ है।
0: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों की पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कुनू नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय दो तरफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिले में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पारोना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के आंवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं 12वीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और बरगीरी में हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी को सौंपी गई है, जो आगामी 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ सम्मान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अम्बुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड

0: काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तपिश भरी दोपहरी में गर्मी से हर इंसान परेशान तो है, लेकिन इस तपिश में मुट्ठी भर गीतों की छांव आकाशवाणी आप तक पहुंचाता है। तो चलिए, आप जुड़ ही चुके हैं हमसे, आपकी फरमाइश पर कुछ गाने हम आप तक पहुंचाने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताते हैं जिनकी फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है। ये श्रोता हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और ये खत आया हुआ है तिल्दा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम और सोमेन। अगली चिट्ठी आई हुई है सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से। हमारे श्रोताओं के नाम हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेन्द्र प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। और ये खत आया है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन का। सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आवाज आशा भोसले की है, संगीत ओपी नैयर का। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूं।

और अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर, फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं इसके लिए। गीतकार हजरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और अनुरोध आप सबका है, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से नरेश नाचानी, भारती, विनीत, प्रगति, मिथिल नाचानी और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया की भी यही फरमाइश है। और ये खत आया हुआ है सारणी जिला बैतूल से, अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाघ, पंजाब राव और साथ में है संदीप पाटिल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा। वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश पल्लवी, सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट का हमने आपको नाम बताया ही। ये खत आया हुआ है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, और इसी गीत को पसंद करते हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से श्रोताओं के नाम हैं मधु राजावत, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं नीला आकाश फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। ये मेरे दिल की मजबूरियां भी क्या खूब हैं, तुम्हारा राज तुम्हीं से छुपा रहा हूं।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत और हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये

श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म से। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की हैं, बोल जानिसार अख्तर के और धुन ओपी नैयर की। अनुरोध आप सबका है। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद बबन, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोक वाघ,

0: भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं। सोहन जोशी, विष्णु, अज्ञिता, अमृता जोशी, लोकेश और बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन। और ये खत आया हुआ है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। और इसी गीत को पसंद करते हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये गीत।
1: आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
0: दूर ही दूर से इकरार हुआ करते हैं, कुछ इशारे पसी दीवार हुआ करते हैं।

और अब आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत एन दत्ता का संगीत। इसके लिए आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। पसंद आप सबकी है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। कमर कॉलोनी बड़वाह से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम।

और मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और अंशिका, आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। यूं तसव्वुर पे बरसती हैं पुरानी यादें, जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत थे ये जो हमने भेजे आप तक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब इसके साथ ही अपनी दोस्त सुनीता सिंह को आपकी फरमाइश कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपयोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीरामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुरी जिले के कुरु नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। न्यूजीलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल बैतूल जिले के भ्रमण पर है। ये दल मधु संग्रहण एवं जनजातीय आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर रहा है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पारुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे राग रजनी कार्यक्रम में। रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन राग कामोद। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोकरंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मंच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को ही अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों, जब भी हम न्यूज देखते हैं या सुनते हैं तो हमें CRR, रेपो रेट जैसे भारी भरकम शब्द कानों में सुनाई देते हैं। आखिर क्या होते हैं ये? चलिए अगले 3 मिनट में इन मुश्किल शब्दों की कड़ियां खोलते हैं बहुत ही आसान भाषा में। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ हैं
1: खुशी करवरिया।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: सबसे पहले बात रेपो रेट की करते हैं। इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब बैंक को पैसों की कमी पड़ती है तो वो RBI के पास जाते हैं। जिस ब्याज दर पर RBI बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। अगर ये बढ़ा तो समझिए आपके होम लोन और कार लोन की EMI भी बढ़ सकती है।
0: अब आते हैं उन शब्दों पर जो बैंक अपनी तिजोरी में बांध कर रखते हैं। इसमें पहला है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसके अंतर्गत हर बैंक को अपने कुल कैश का छोटा सा हिस्सा, लगभग 4 या 4.5% हमेशा बैंक के RBI के पास रखना पड़ता है। इसे बैंक खर्च नहीं कर सकते। ये एक तरीके की सुरक्षा निधि कहलाती है।
1: जी हाँ। और दूसरा है SLR। ये वो पैसा है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जैसे कैश, गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स। ये इसीलिए होता है ताकि अगर कभी अचानक बहुत सारे ग्राहक पैसे निकालने आ जाए तो बैंक का दिवाला तो ना निकले।
0: अगर बात करें रिजर्व रेपो रेट की तो वो रेपो रेट का उल्टा है, यानी जब बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है तो वो उसे RBI के पास जमा कर देते हैं। इस पर RBI उन्हें ब्याज देता है, उसे ही रिजर्व रेपो रेट कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब आप कहेंगे कि आम आदमी पर इन बैंक दरों का क्या ही प्रभाव पड़ता होगा। तो अगर RBI रेपो रेट कम करता है तो बैंक हमें सस्ता लोन देते हैं, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है तो RBI इन दरों को बढ़ा भी देता है। यानी ये दरें ही तय करती हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा और कितना EMI में जाएगा।
0: तो उम्मीद है कि अगली बार जब आप अखबार में ये शब्द पढ़ेंगे या कहीं न्यूज में इन्हें सुनेंगे तो आप भी बैंकिंग एक्सपर्ट की तरह मुस्कुराएंगे।
1: बिल्कुल। तो अभी आपने जाना बैंक की विभिन्न दरों के बारे में। चलिए रुक लेते हैं एक अंतराल के लिए।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर BR श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
1: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब हम बात करेंगे उस टेक्निक की जिससे कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग बेहद एक्साइटेड रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI।
0: अब सवाल ये है कि AI क्या हमारी नौकरियां ले लेगा या फिर ये हमारे करियर को रॉकेट की तरह उड़ाएगा? इसी पर बात करने के लिए आज हम आपके साथ हैं।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहले ये डर निकाल दीजिए कि AI इंसानों की जगह ले लेगा। असल में AI इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि AI का इस्तेमाल करने वाला इंसान उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जिसे AI नहीं आता।
0: इसलिए साथियों, दुनिया बदल रही है। आने वाले समय में कुछ खास स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, जैसे AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स,

0: क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी आदि। मतलब हमें खुद को अपग्रेड करना होगा जैसे हम अपने फोन को करते हैं।
1: आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो या आर्टिस्ट हो, बस ये सीख लीजिए कि एआई आपके काम को और बेहतर और तेज कैसे बना सकता है।
0: इसलिए दोस्तों, एआई से डरना नहीं है, उसे अपना दोस्त बनाना है। एआई कोई खतरा नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है, पर ये सुपर पावर काम तभी आएगी जब आपके पास इसे चलाने का हुनर होगा।
1: और हाँ, तकनीक तो बदलती रहेगी, टूल्स भी बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी यानी कुछ नया सीखने की जिज्ञासा कभी कम नहीं होनी चाहिए।
0: भविष्य उसका नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि भविष्य उन लोगों का है जो हर रोज खुद को रीइन्वेंट करने की दम रखते हैं। अपने स्किल में निवेश कीजिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा रिटर्न देगी।
1: दोस्तों, मशीनें कोड लिख सकती हैं, पर भविष्य

0: तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया के लिए जहां आपकी कल्पना और एआई की रफ्तार मिलकर जादू करेंगे।
1: तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी एआई और भविष्य के करियर के बारे में। कार्यक्रम में फिर लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद ले चलेंगे आपको आज की अगली चर्चा की ओर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद अब हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिससे हमारा आज और कल दोनों जुड़े हैं, यानी हमारी धरती और बदलता मौसम।
2: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की। कई युवाओं को लगता है कि वो जिस दिनचर्या का पालन कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। तो हम आपको बता दें कि आज हमारे द्वारा किए कार्य जलवायु और पर्यावरण पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं।
1: बिल्कुल, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं रहे। हम वो पीढ़ी है जो इस बदलाव को सबसे ज्यादा झेलने वाली है, इसीलिए समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा।
2: सही कहा खुशी, पर अक्सर सवाल उठता है कि एक अकेला युवा क्या कर सकता है? क्या मेरे प्लास्टिक स्ट्रॉ छोड़ने से दुनिया बदल जाएगी?
1: तो दोस्तों, समंदर बूंद बूंद से ही बनता है। युवाओं के पास तीन बड़ी ताकतें हैं। पहला सोशल मीडिया, जिसके जरिए आप अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
2: इसी के साथ हम सस्टेनेबल ब्रांड्स चुन सकते हैं और यूज एंड थ्रो कल्चर को ना कहकर टाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम प्रशासन और कंपनियों से उनके कार्बन फुटप्रिंट पर भी सवाल कर सकते हैं।
2: दोस्तों, अब ये जानना भी जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी आज का युवा आखिर कर क्या सकता है।
1: तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को रोकने में मदद कर सकते हैं।
2: जैसे अपने घर जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें।
1: जब भी कमरे में ना हो तो लाइट और पंखे बंद कर दें, LED बल्ब का प्रयोग करें जिससे ऊर्जा की बचत होगी।
2: सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े या थैले का उपयोग करें, स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करें।
1: इसी के साथ साथ अपने क्षेत्र में वनों की कटाई, प्रदूषण और पानी की बर्बादी के खिलाफ भी आपको आवाज उठानी चाहिए।
2: पानी बर्बाद ना करें, वर्षा जल संरक्षण तकनीकों के बारे में लोगों को बताएं और खुद भी सीखें।
1: तो दोस्तों, इस धरती के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अगर हम नहीं तो कौन, और अगर अभी नहीं तो कब। तो अभी आपने जाना क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़ा हुआ युवा क्या कर सकता है इसके बारे में। अब समय आ गया है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम की ओर बढ़ने का, जिसका नाम है सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 119। और जैसे कि दोस्तों हमने पिछले सोमवार को आपको इस अंक से संबंधित 10 प्रश्न बताए थे, तो अब समय हो गया उन प्रश्नों के सही उत्तर जानने का। हमारा पहला प्रश्न था, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 7 मई को।
2: हमारा दूसरा प्रश्न था, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है रोहित जैन को।
2: हमारा चौथा प्रश्न था, भारत और कंबोडिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सिनबैक्स।
1: हमारा पांचवा प्रश्न था, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में किसके लिए नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जो जिसमें ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं कार्य करती हैं।
2: हमारा छठवा प्रश्न था, NASMSR यानी नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल को किसने

0: ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर।
1: हमारा सातवां प्रश्न था, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है लॉस एंजल्स, USA में।
0: हमारा आठवां प्रश्न था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा।
1: हमारा नवा प्रश्न था, एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब था जेम्स क्लियर।
0: हमारा सवाल, हमारे जवाब आपके अंक 119 का आखिरी यानी दसवां प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जिसका सही उत्तर है AO ह्यूमे।
1: तो दोस्तों, ये थे 10 प्रश्न और उनके सही जवाब। हम आपको बता दें कि इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें ईमेल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के प्राप्त हुए हैं, और ये प्रसन्नता का विषय है कि हमें 1 से लेकर 7 सही जवाब वाले एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, हमें 8, 9 और 10 सही जवाब वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो ऐसा हमें एक ही पत्र प्राप्त हुआ है, भरेबा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमिश, नेहा और वान्या सिंगरौल का।
0: हमें 10 में से 9 सही जवाब वाले 2 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला पत्र है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा द्वारा,
1: और दूसरा पत्र है अड़ार नांदगाड़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।
0: आइए साथियों, बढ़ते हैं 10 में से 10 सही जवाब वाले प्रश्न के सही उत्तरों की ओर। यहाँ हमें बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं, जिसमें पहला पत्र प्राप्त हुआ है हमें दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन व नवदीप ये लेकर।
1: हमें अगला पत्र प्राप्त हुआ है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है करवदा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू द्वारा।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुसार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, मुरली, राजेंद्र, माधव वर्मा।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता द्वारा।
1: अगला पत्र हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा का।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू द्वारा।
1: अगला पत्र हमें मिला है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुसारणी, भूवेंद्र मसिया।
0: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है बालोद छत्तीसगढ़ से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबकिया, लीना और आशुतोष अंगारे द्वारा।
1: अगला पत्र हमें मिला है जो अंतिम पत्र है 10 प्रश्नों वाला रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा का। तो सबसे पहले तो ये आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी ने 10 में से 10 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन कार्यक्रम के नियमानुसार हमें इसमें से किसी एक विजेता का चयन करना होगा। तो अभिदीप, मैंने पर्चियां बना ली हैं, आप इनमें से एक पर्ची का चयन कीजिए और बताइए कि आज के हमारे 119 अंक का ये जो कार्यक्रम है उसका विजेता कौन होता है।
0: जी, तो ये लीजिए पर्ची खुशी
1: जी। तो श्रोताओं, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 119 के कार्यक्रम के आज के जो हमारे विजेता हैं वो है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आज के आप विजेता होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने विजेता की पसंद का गाना सुनवाते हैं, तो हम आपको विजेता की पसंद का गाना सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइएगा, क्योंकि इस गाने के बाद हम आपको सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 के प्रश्न भी बताएंगे। चलिए आइए सुन लेते हैं हम हमारी विजेता के पसंद का ये गाना।

0: तो साथियों, उम्मीद है कि आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे। आइए अब बढ़ते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 के प्रश्नों की ओर।
1: हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं।
0: हमारा दूसरा प्रश्न है, डीएनए की रासायनिक खोज किसने की थी।
1: हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है।
0: हमारा चौथा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की लोक कला है।
1: हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था।
0: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है।
1: हमारा सातवां प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
0: हमारा आठवां प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यात्रा वृतांत का क्या नाम है।
1: हमारा नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है।
0: हमारा दसवां प्रश्न है, आकाशवाणी केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है।
1: साथियों, एक बार फिर से हम आपको प्रश्न दोहरा देते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं।
0: दूसरा प्रश्न है, डीएनए की रासायनिक खोज किसने की थी।
1: तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है।
0: चौथा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की लोक कला है।
1: पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था।
0: छठवां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है।
1: सातवां प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
0: आठवां प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यात्रा वृतांत का क्या नाम है।
1: नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है।
0: दसवां प्रश्न है, आकाशवाणी केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है।
1: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 120 युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र छतरपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 471001।
0: आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। साथियों, हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com।
1: इसके लिए हमें आपके पत्र 18 मई 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके प्रश्नों को, आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सके।
0: आइए साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आपको पुनः ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे तो अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी हंस राज हंस की।
1: इरशाद कामिल के शब्दों को संगीत में पिरोया था प्रीतम ने। आइए साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़कर ले चलते हैं आपको वार्ता की ओर। विषय है परीक्षा के तनाव से बचने के उपाय। वार्ताकार हैं कुलदीप मिश्रा।
2: प्यारे बच्चों, प्रायः देखा गया है कि आप लोग परीक्षा को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं, तो हमें सबसे पहली बात है कि टेंशन नहीं लेना है। इस टेंशन से हमें कैसे बचना है, इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको टेंशन ना हो और आप बिना तनाव को लिए हुए अपने पेपर को बहुत अच्छे से दें और एक उज्जवल भविष्य आपका निर्धारित हो। परीक्षा के तनाव से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पढ़ाई की योजना समय से बनाएं, नियमित रिवीजन करें और संतुलित आहार के साथ 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। प्रायः देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई की टेंशन में रात भर पढ़ते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है कि मेरा पेपर कैसा हो। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि आपको पर्याप्त नींद भी लेना है, कम से कम 7-8 घंटे की। लगातार न पढ़कर छोटे छोटे ब्रेक लें, योग या मेडिटेशन करें और अपनी पसंद की कोई हॉबी अपनाएं। जैसे कुछ बच्चों को म्यूजिक सुनना पसंद होता है तो स्लो म्यूजिक भी सुन सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर दोस्त या परिवारों से खुलकर बात करें। परीक्षा के तनाव से निपटने के कुछ उपाय हैं, जैसे व्यवस्थित तैयारी।

ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन, परीक्षा का सिलेबस पहले ही समझें और एक व्यवस्थित समय सारणी टाइम टेबल बनाएं। नियमित रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराएं। इसे अंतिम समय में घबराहट कम होगी। स्वस्थ जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल जो होनी चाहिए वो एक हेल्थी होनी चाहिए। आपको पौष्टिक खाना खाना है और परीक्षा के दिनों में पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि नींद की कमी से भी तनाव बढ़ता है। ब्रेक लें, लगातार 3-4 घंटे ना पढ़ें। 45-50 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें। साथ ही आपको योग और ध्यान भी करना है। रोजाना सुबह योग या प्राणायाम करें, इससे आपका मन शांत रहता है। साथ ही आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच भी रखनी है। अगर परीक्षा या कोई पेपर आपका खराब हो गया है तो आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है। कोई निगेटिविटी नहीं लानी है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। एग्जाम के दिनों में आपको खास तौर पर उन विषयों को या उन टॉपिक्स को ही आपको बार बार रिवाइज करना है। नया आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको उसे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपने पढ़ रखा है उसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। अंतिम समय में पढ़ाई ना करें। जब आपका रिवीजन हो जाए तो आपको सिर्फ अपने उसी टॉपिक को बार बार दोहराना है। 2-4 बार कम से कम रिवाइज अवश्य कर लें। परीक्षा के एक दिन पहले कुछ भी नया ना पढ़ें। परीक्षा के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक व्यवस्थित अध्ययन योजना और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको परीक्षा की तैयारी से कोई भी घबराहट या डरना नहीं है। आपको निरंतर अपना जो भी रिवीजन है उसको करते रहना है। मेहनत से अब परीक्षा जीतना है। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। मेहनत से अब परीक्षा जीतना है। किताबें हैं दोस्त, अब कैसी ये घबराहट। मुस्कुरा के करना है हर सवाल का सामना। मुस्कुराकर करना है हर सवाल का सामना। बच्चों, आपको इस समय पे आपके फ्रेंड वगैरह फोन कर रहे हैं। आजकल देखा गया है कि ज्यादातर लोग फोन पे ही लगे हुए हैं, तो इस समय आपको अपने ऐसे मित्रों से जो आपको डिस्टरबेंस कर रहे हैं उससे दूर रखना है। अपने ही घर पे रह के आपको स्वाध्याय करना है। मोबाइल फोन, टीवी, इन सब से आप दूरियां बनाकर रखें। ज्यादा से ज्यादा आप समय अपनी पुस्तकों के साथ व्यतीत करें। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उन पर फोकस करना है। जो पिछले परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं, कम से कम 10 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, उनके प्रश्न देखें, उनका रिवीजन करें। उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे आपको फोकस करना है। जो ज्यादा प्रश्न जिस टॉपिक से आते हैं आपको उस टॉपिक को देना है। जैसे आपके प्रश्न आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, तो आपने देखा होगा कि उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी अथवा रहता है। यदि आपने कोई सिलेबस, कोई टॉपिक आपका यदि छूटा हुआ है सिलेबस से, तो जरूरी नहीं है कि आपने वो टॉपिक नहीं आया तो अब आपका पेपर नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको कतई नहीं सोचना है, क्योंकि अथवा में आपको ऑप्शंस जरूर मिलते हैं। तो आपने जो पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यदि आपके पढ़े हुए को भी आप नहीं कर पाए हैं तो फिर मार्किंग में आपका उस पर असर पड़ेगा। तो हमें अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि जो हमने रिवाइज, मतलब जो हमारा अच्छा टॉपिक हमने पढ़ रखा है, उसी को हमको क्या करना है, बार बार हमको रिवाइज करते रहना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे आते हैं वो भी आपने देखा होगा, कम से कम हाफ पेज का तो लिखना ही होता है, तो उस पर भी हमको फोकस करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विशेष तौर पर उस पर दें, राइटिंग का भी ध्यान दें। हमारी लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर हैं, चेक करने वाले हैं, वो आपकी लिखावट को समझ सके। जो आपने मेन टॉपिक्स लिखा हुआ है, कोई आप कोटेशन देते हैं तो उसको काले स्केच पेन से अंडरलाइन जरूर करें, ताकि या हाइलाइटर आपका जो आता है, आपने देखा होगा मार्केट में हाइलाइटर भी आपको मिलते हैं, तो उस हाइलाइटर से उसको अंडरलाइन करें। इससे क्या होगा, आपको हाइलाइटर से अंडरलाइन करेंगे तो कोई भी आपने जो कोटेशन या टॉपिक या मेन मेन जो चीज है वो आपको चेक करने वाले को उस पे आपको जरूर दिख जाएगा, और वो आपको योग्यता से प्रभावित होके आपको उसमें अच्छी मार्किंग करेगा। राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि उस टॉपिक से आपको कोई कविता या पोयम भी आती है कोई छोटी सी, तो उसको भी उसमें जरूर मेंशन करें। इससे क्या होगा, आपके जो आपके विचार के बारे में है वो एग्जामिनर को पता चलेगा और आपको

0: अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ज्यादातर अभी ये भी देखा गया है कि आप जो बच्चे होते हैं वो मैथ के पेपर से बहुत डर जाते हैं, तो आपको मैथ से भी बिल्कुल डरना नहीं। मैथ भी बहुत एक आसान और सरल विषय है। हमें क्या करना है, बस हमारा लास्ट टाइम है, एग्जाम टाइम है, तो हमको हमारे जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को बार बार देखिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने कम समय में कितना अच्छा पेपर तैयार कर लिया है।
1: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता विषय परीक्षा के तनाव से बचने के उपायों पर। वार्ताकार थे कुलदीप मिश्रा। आइए कार्यक्रम में आगे आपको ले चलते हुए दे देते हैं रोजगार सूचना।
2: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी योग उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है बाल विकास परियोजना अधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, उप विभागीय संरक्षण अधिकारी और 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा।
2: जी हाँ, और पदों की संख्या 1186।
1: शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
2: आयु सीमा की यदि बात की जाए तो न्यूनतम आयु 20 से 22 वर्ष रखी गई है, जो अलग अलग पदों के अनुसार है। वहीं अधिकतम आयु सीमा 37 से 42 वर्ष है, ये भी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि है 31 मई 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं।
1: आइए साथियों, कार्यक्रम का अंत करने से पहले आपको सुनवा देते हैं मनोरंजन के लिए एक और गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जाने तू या जाने ना का ये गीत। आवाज थी राशिद अली की। अब्बास टायर वाला के बोलों को संगीत में पिरोया था एआर रहमान ने।
1: तो जाते जाते हम आपको कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी दे देते हैं। कल आप सुनेंगे भेंटवार्ता, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, युवाओं की पसंद विषय पर डॉक्टर अवनेन्द्र कौशिक से रविन्द्र कुमार प्रजापति की खास बातचीत, साथियों की महत्वपूर्ण चर्चाएं और दी जाएगी रोजगार सूचना।
0: इसी के साथ ही वक्त हो चला है आप सभी से आज विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सोहाने और मेरे साथ थी
1: खुशी करवरिया। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। मीडियम ऐप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल से पहले आपने सुना इश्क है तुमसे, इस फिल्म का गीत आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की थी, संगीत दिया हिमेश रेशमिया ने।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओ लवली, वेल डन,
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड,
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ में कार भी ले लो
2: उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार में तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आपने सुना एतवार फिल्म का गीत, आवाज उदित नारायण और सुनिधि चौहान की थी। धुन तैयार की राजेश रोशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडिया मैप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

आइए अब आपको बताते हैं आज के शेष और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे बद्री प्रसाद खरे, निरंकार व साथी। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें सुनिएगा श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा होगी वार्ता ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुनील कुमार। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 8:15 पर। श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन 10:00। भोपाल केंद्र से सुनिएगा 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। सुर्खियों में 8:00। दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे स्पॉटलाइट 9:15 पर। 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, खेती किसानी 6:35 पर, विषय होगा मधुमक्खी पालन, कुछ तकनीकी बातें। श्री रामचरित मानस कान 6:40 पर, गायक सुरेश वाटकर, संगीत संयोजन सतीश पाटिया का होगा। चिंतन 6:50 पर, 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली कहानी शिक्षा की ज्योत, कहानीकार होंगे डॉक्टर बहादुर सिंह परमार। 8:30 पर रसावतरण में आप सुनेंगे कवि गोष्ठी।

फिल्म संगीत सुबह 7:30 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम में 9 बजे कलाकार होंगे सुश्री हीरा कुशवाहा और कल्लू सिंह घोषी। 9:30 पर एक ही गीतकार में सुनिएगा सुधाकर शर्मा के कुछ गीत। 10:05 पर पत्रिका कार्यक्रम में सुनेंगे वार्ता, पर्यावरण में सहायक वन्य जीव, वार्ताकार होंगे मंगलदीन अहिरवार। 10:35 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। महिला कार्यक्रम शाम 5 बजे वाणी कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरी युवाओं की पसंद विषय पर डॉक्टर अमीन कौशिक से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। 6:23 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। 7:20 पर घरनी कार्यक्रम में सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा वार्ता, बुंदेलखंड परिक्षेत्र में ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों की बढ़ती मांग, वार्ताकार होंगे डॉ अमित कुमार सिंह। मनभावन कार्यक्रम रात्रि 10 बजे। भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश 12 बजे। संग्रहालय से 12:30 पर लोक संगीत 1:30 पर, सुगम संगीत 1:45 पर। 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुर्खियों में रात्रि 8 बजे। दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे स्पॉटलाइट 9:15 पर, 9:30 पर मनी टॉक। ये थे कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हमारा अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और देश के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान देने का एक प्रमुख आधार बन गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओ, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओ, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes, sir. We have seen.
5: I have seen, sir.
6: I like bicycle, sir.
7: I love it.
3: That's very good. And children.

0: we have to be careful about our safety and also the safety of others.
1: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
3: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
4: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
5: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
4: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
5: वो तो ठीक है साहब,
4: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
5: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
4: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
5: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
4: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
3: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो

0: जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।

0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
1: सर सर, ये क्या? ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
3: यस सर।
2: नाथ सिंह, निशाना साधो।
1: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर!
1: सर,
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
3: जी।
2: फायर!
1: सर सर, वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
1: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया।

0: सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। मीडियम ऐप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज का नकार है बद्री प्रसाद खड़े निरंकार व साथी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं दादरा से।

0: बद्री प्रसाद खरे निरंकार व साथियों से अभी आपने सुना दादरा।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ।

0: और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में चोयल पत्थर।
1: चोयल के असली पत्थर के लिए आएं ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
1: तू नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं खेल गीत।

0: अभी आपने सुना खेल गीत बद्री प्रसाद खरे निरंकार व साथियों से।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आपने सुना किसान गीत, बद्री प्रसाद खरे निरंकार व साथियों से। लोकधारा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लोक शैलीबद्ध गीत। कलाकार एक बार फिर बद्री प्रसाद खरे निरंकार व साथी।

भी एडमिशन आई रही का पड़े बद्री प्रसाद खड़े निरंकार व साथियों से। आइए अब सुनते हैं डिमरियाई कलाकार एक बार फिर बद्री प्रसाद खड़े निरंकार व साथी।

अभी आपने सुनी डमरियाए, कलाकार थे बद्री प्रसाद खरे, निरंकार वासा थे। इसी के साथ कार्यक्रम लोकधारा अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे बद्री प्रसाद खरे, निरंकार वासा थे। मीडिया में पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

per observarti के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ोन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब सुनिए गुमशुदा सूचना। गुमशुदा का नाम कुमारी साक्षी, उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम हरनारायण पाल, निवासी ग्राम रामपुर सनेता थाना कोट जनपद जालौन से। गुमशुदा कुमारी साक्षी 14 फरवरी 2026 को कोच से सुबह 7 बजे घर से निकली थी, जो अभी तक वापस नहीं लौटी। गुमशुदा का शारीरिक खुलिया, रंग गोरा, कद 4 फुट 4 इंच, ये गुलाबी रंग का स्वेटर एवं नीले कलर का लोअर पहने हुए हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9519490665। सूचना समाप्त हुई।

अब सुनिए एक और गुमशुदा सूचना। गुमशुदा व्यक्ति का नाम शिवा सिंह, उम्र 20 वर्ष, पिता का नाम संदीप सिंह, निवासी हैदरपुर थाना आटा जनपद जालौन से। गुमशुदा व्यक्ति 2 फरवरी सन 2026 को दोपहर 12 बजे

अब सुनिए एक और गुमशुदा सूचना। गुमशुदा व्यक्ति का नाम शिवा सिंह, उम्र 20 वर्ष, पिता का नाम संदीप सिंह, निवासी हैदरपुर थाना आटा जनपद जालौन से। गुमशुदा व्यक्ति 2 फरवरी सन 2026 को दोपहर 12 बजे जौनपुर मोड़ थाना कालपी जालौन से अपने घर के लिए टैक्सी में बैठा, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। गुमशुदा का शारीरिक हुलिया, लंबाई 5 फीट 10 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, ये काली जैकेट सफेद पैंट पहने हुए हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो इस नंबर पर संपर्क करें 9454401429। सूचना समाप्त हुई।

0: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
0: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ,
0: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ली ले?
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुल्लू नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, ये संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे DG पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, SP के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
0: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण BIS मानन, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव।

ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1,763 करोड़ रुपए की लागत से 2,117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्य को मंजूर दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कुनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कुनू नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के सोयत कला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावत में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावत द्वारा संवाडिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूं खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्य में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ऑफिस आओगी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
3: और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: बेनंद खां आनंद भैया की तो यहाँ जोड़ के राम राम पहुंच जावे। भैया बहनों देखो, हम हमेशा से आशा करते हैं कि हमारे जौन भैया बहन है वे अच्छे से हुई है और उनके जौन सभी काम काज है वे ऊपर वाली की कृपा से अच्छे से चल रही हुई है। भैया बहनों देखो, अपन जानते हैं कि अपन जीवन में अगर अपने जौन अपनो अधिकार कर्तव्य है, जौन अपनो धर्म है, अगर उनको सही प्रकार से पालन कर रहे हैं तो भैया जीवन में हर काम अच्छे होते हैं। अब जैसे भैया अपन उनको एक का धर्म है कि अपने जौन बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता हैं, उनकी अपन का सेवा करने हैं। कैसे भैया जो अपन को अधिकार भी है, कर्तव्य भी है और धन धर्म भी है, तो भैया अपन का ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखने कि अपने जौन बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने हैं, उनके खान पान को ध्यान रखने हैं, क्या भी को मतलब जो है कि उनका हमेशा से ध्यान पूर्वक देख रेख करने हैं। भैया बहनों ऐसे कछु बतका अपन जब किसी खेती किसानी को करते हैं तो भैया खेती किसानी में भी ऐसे कछु काम है जो अपन के लाने करने हैं। अब जैसे भैया एक काम की बतकाव करें वो है मिट्टी परीक्षण। भैया अपन जानते हैं कि जब माटी में जो भैया उपजाऊ जो तत्व होते हैं वे कम हो जाते हैं तो उनके लाने अपन का क्या करने पड़ा थे, अपनी जो फसल की पैदावार है वह कम होने लगा थे। तो उनके लाने भैया बहनों अपन का जब भी फसल की कटाई हो पाए दो तीन साल के भीतर अपन का मिट्टी की अपनी जांच जाके करवाने हैं। एक लाने अपन का क्या करने अपन जाना थे, अपन का अपने कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करने और कृषि कार्यालय में जाके संपर्क करने हैं। भैया बहनों कहा से भैया मिट्टी की जो अपन जांच करते हैं उसे कहा होते हैं कि भैया जो अपनी मिट्टी के पोषक तत्व है, उर्वरक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, जो भैया मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनकी अपन को जानकारी लग जाते हैं और अगर कोनो परेशानी है तो उनको उपाय अपन समय से कर सकते हैं। भैया बहनों अपन अगर बतकाव कर भी पता न रोक के
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पंचवैयारो ग्राम सभा कार्यक्रम में अपन सबको फिर से स्वागत करते हैं हम आनंद भैया। भैया बहनों देखो अपन जानत हैं कि अपन सभी जने खेती किसानी को काम कर रहे हैं और खेती किसानी के संगे ऐसे कई प्रकार के काम है जो उनसे अपन का लाभ होते है। अब ऐसे ही भैया एक काम है बकरी पालन को। भैया बहनों अपन जानत हैं कि बकरी पालन करवे से खर्चा कम होते है लेकिन अपन का अच्छो खासो में अपन मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरी रात है पूरी तरीके से जानकारी लेवे की और उनमें कौन प्रकार से बीमारी लगत है, इनमें कैसे काम करो जाते हैं, उनके प्रकार से कैसी कैसी समस्या आती है, उनका कौन प्रकार से समाधान करने। भैया बहनों अपन पूरी जानकारी लेके अपनो जो बकरी पालन को व्यवसाय है वो अच्छे से करें और लाभ को प्राप्त करें। भैया बहनों अगर अपन का मौका की जानकारी सुनवा भी पता न रोक के।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स मंदिर की माता।
4: गठियावाद गठुआवाद और घुटनों के दर्द से आप लंबे समय से पीड़ित हैं तो निजात पाने के लिए संपर्क करें वैद्य रामचरण प्रजापति खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फोन नंबर है 9993285161। अपने दर्द का उपचार पाइए वैद्य रामचरण प्रजापति से।
1: पंच भैया बिल्कुल हम जानते हैं कि हमारे भैया बहन ने अभी कुछ देर पहला फोन लगाए थे और बिल्कुल बात ही रही हुई है अपनो पसंदीदा कार्यक्रम रमतू लसुन बिकलाने। बिल्कुल भैया बहनों अपन जानत हैं कि रमतूला कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स ईमेल और पत्रन पे आधारित बुंदेली लोकगीतों को फरमाइजी कार्यक्रम है। तो भैया सुनत हैं अपन को पसंदीदा कार्यक्रम जो उनकी प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की।

0: भैया बहनों, आज को रमदूला कार्यक्रम हम लेके आए हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम सुनने वाले सबरे भैया बहनन खा आनंद भैया की तो यहाँ जुड़ के राम राम पहुँच जावे। भैया बहनों, अपन सभी जने जानत हैं कि रमदूला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार खा दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में करी जात है। और भैया बहनों, इको प्रसारण वही दिना सोमवार खा ग्राम सभा कार्यक्रम में करो जात। और जोन भैया बहन कार्यक्रम में फोन लगाबो चाहूत है, बे इन फोन नंबर के लाने लिख ले वे। बे फोन नंबर है 241588 और 29 80 29। छतरपुर से बाहर के भैया बहन एसटीडी कोड लगा के फोन लगाएं। एसटीडी कोड है 076-82। तो भैया बहनों, अपन सभी जने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊत है और चलत है कार्यक्रम के पहले लोकगीत की तरफ। भैया बहनों, कार्यक्रम को पहला लोकगीत है मालती विश्वकर्मा की आवाज में जब बे भाई गारी। भैया बहनों, ये लोकगीत कहाँ सुनने के लाने अपन सबने फोन करी है। हाँ जी, हेलो रमदूला से।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, कहाँ से कौन बोले हैं?
1: सर, मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: अच्छा बाबू, ये आज कौन से कलाकार को लोकगीत सुनने अपन
1: का? भैया, आज हमको एक नंबर का मालती विश्वकर्मा का विवाह गारी वही सुनवा दीजिएगा।
0: ठीक है भैया।
2: ग्राम पनवाड़ी से मैं सुनीता अहरवाल बात कर रही हूँ सर। पहले नंबर का सुनना है मालती विश्वकर्मा की आवाज।
0: हाँ जी, हेलो रमदूला से।
3: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। मालती विश्वकर्मा जी की आवाज में सुनवा देंगे।
4: जी सर, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर। और सर जी, मालती विश्वकर्मा जी की आवाज में बभाई गारी सुनना है।
5: हम ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं सर जी। यहाँ पहले नंबर का सुनना है मालती विश्वकर्मा का।
6: हम पाठक मोहल्ला मोहन कला से बोल रहे हैं परसाम पाठक। सर, हमें पहले नंबर को लोकगीत सुनवा दो, आप मालती विश्वकर्मा को गाओ।
0: भैया बहनों, यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने चिट्ठियां भी डाली हैं और कछु ईमेल से भी चिट्ठियां मिली हैं। और वे चिट्ठियां हैं राजकोट गुजरात से रश्मि और भरत कुमार, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप व संजय, ग्राम बीरो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से देवेंद्र पटेरिया, साधना पटेरिया और कामना, ग्राम ब पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश और अखिलेश। तो भैया बहनों, चलो अपन सबकी पसंद पे सुनत है मालती विश्वकर्मा की आवाज में जब बे भाई गारी। देखो

0: अपन सभी जन ने सुनी मालती विश्वकर्मा की आवाज में जा विभागारी। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाउत हैं और चलत हैं कार्यक्रम के दूसरे लोकगीत की तरफ। और कार्यक्रम को दूसरा लोकगीत है चुन्नीलाल रैकवार की आवाज में पर्यावरण लोकगीत। भैया बहनों ये लोकगीत खां सुनबे के लाने अपन सब ने फोन करे है।
1: हेलो।
0: हाँ जी हेलो रमतुल्ला से।
1: ग्राम पनवाली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवदीन अहरवार बात कर रहा हूँ सर जी।
0: हाँ देवदीन भैया आज कौन से कलाकार को लोकगीत सुने अपन का?
1: आज दूसरे नंबर को सुनवा दो चुन्नीलाल रैकवार जी की आवाज में।
2: चंद्रमान नामदेव बोल रहे हैं ग्राम पोस्ट देरी जिला छतारपुर से। हमको दूसरे नंबर को लोग भी सुनना है चुन्नीलाल रैकवार को।
3: हम ग्राम पोस्ट गोला कुछमार थाना सोजना तहसील मायोली जिला ललितपुर से आपका अपना नियमित श्रोता कैलाश नारायण नामदेव बोल रहे। हमको चुन्नीलाल रैकवार के स्वर में पर्यावरण लोग भी सब सुनना है
4: जी। मैं चित्रकूट के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी। चुन्नीलाल रैकवार की आवाज में मुझे जो है एक लोकगीत सुनना है।
5: चुन्नीलाल रैकवार की आवाज में लोकगीत सुनना सर। हम जगत सिंह चार ग्राम पिपलिया भराई तहसील भिगवानी से बोल रहे।
0: भैया बहनों यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सब ने कछु चिट्ठिया डाली है और कछु ईमेल से भी चिट्ठिया मिली है। और भी चिट्ठिया है सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक और हर्षित शर्मा ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आकाश विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा बेनी सागर मोहल्ला जिला पन्ना मध्य प्रदेश से ए के पांडे रघुवीर यादव और अनुज शर्मा। तो चलो भैया बहनों अपन सबकी पसंद पे सुनत है चुन्नीलाल रैकवार की आवाज में पर्यावरण लोकगीत।
6: एक एक पेड़ लगाने हैं।

0: भैया बहनों, आप अपन सभी जने सुन रहे थे चुन्नी लाल रैकवार की आवाज में पर्यावरण लोकगीत। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाऊत है और चलत है कार्यक्रम के तीसरे लोकगीत की तरफ। और कार्यक्रम को तीसरा लोकगीत है घनश्याम दास गुप्ता की आवाज में लोक शैलीबद्ध लोकगीत। यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने फोन करे है और बेफोन है। हाँ भैया, हेलो रमतुला।
1: गुड्डू चौबे बोल रहे, बम हरी ढूंढा जिला सागर से। घनश्याम दास गुप्ता को सुना दो तीसरे नंबर को।
2: मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से। हमें घनश्याम दास गुप्ता की आवाज में लोकगीत सुनना है।
3: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव। सर जी आज सुनना है हमारे लिए घनश्याम दास गुप्ता जी की आवाज में है सर जी, लोकगीत सुनना है सर जी।
4: अशोक कमल नामदेव ग्राम पोस्ट पापेट तहसील शाहगढ़ जिला सागर से बोले सर जी, तीसरे नंबर का लोकगीत सुनवा दीजिए।
5: ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महानी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में तो लखन नामदेव बात कर रहे सर जी, तीसरे नंबर का लोकगीत सुनना है घनश्याम दास गुप्ता जी की आवाज में।
6: सर हम बोल रहे हैं ग्राम खड़ीचरा जिला अशोक नगर से आसाराम राजा, घनश्याम दास गुप्ता का लोकगीत सुनवा दो सर।
0: भैया बहनों, यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने कछु चिट्ठिया डाली है। नरसिंहगर पुरवा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मंगलनाथ लखेरा, कमलेश, अनुज, चिंकी, जानकी और शकुंतला देवी। बड़ा मलेरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से नेहा शुक्ला, जतिन और परिवार वाले। ग्राम लोगासी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कट्टूबाई पटेल, संतोष पटेल, राहुल, आशा, विशाल, सिमांगी और सारहंस। देवकुलिया जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रक्षा पटेल, आरएन पटेल और परिवार वाले। तो भैया बहनों, चलो चलत हैं और सुनत हैं अपन सबकी पसंद पे घनश्याम दास गुप्ता को गाओ भाव जो लोक शैलीबद्ध लोकगीत।

0: भैया बहनों अब अपन सभी जने सुन रहे थे घनश्याम दास गुप्ता को गाओ भाव जो लोक शैली बद्ध लोकगीत। और भैया बहनों अब अपन चलत हैं कार्यक्रम के चौथे मतलब अंतिम लोकगीत की तरफ। और कार्यक्रम को चौथा लोकगीत है राम कुमार प्रजापति को गाओ भाव जो श्रृंगार लोकगीत। यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने फोन करे है। हाँ जी हेलो रमतुल्ला से।
1: अरे आनंद भैया मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुशमाण थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे भैया। आज हमको चौथे नंबर पर राम कुमार प्रजापति जी की आवाज में एक श्रृंगार लोकगीत है वो लोकगीत सुनना है।
2: राम कुमार प्रजापति की आवाज में सुनना है लोकगीत।
3: ग्राम पुज जिला छतरपुर से नीति पटेल बोल रहे साथ राम कुमार प्रजापति के।
4: हम श्री राम रेडियो सोता संघ बमहरी कलां जिला टीकू और एसएस पाठक बोल रहे भैया। आज हमें चौथे नंबर को सुनवा दो राम कुमार प्रजापति की आवाज में।
5: जी मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रसवास से बात कर रहे हैं। सुनवा दो चौथे नंबर पे है राम कुमार प्रजापति जी की आवाज में।
6: ग्राम चिन्नौदी तहसील पिछोर जिला सीपी से आपका नियमित श्रोता सालक राम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सर जी। आज श्री राम कुमार प्रजापति जी को गाओ लोकगीत सुनवा दो ये चौथे नंबर को सर जी।
0: भैया बहनों यही लोकगीत सुनने के लाने अपन सबने कछु चिट्ठियां डाली हैं और भी चिट्ठियां हैं। खटकियाना मोहल्ला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं सरमनलाल रेखवार हीरालाल राजू संतोष और खेमराज। महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं बलराम श्रीवास बहादुर और प्रीति। अमानगंज मोहल्ला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं हीरालाल राठौर कन्हैया लाल राठौर और परिवार वाले। तो भैया बहनों चलो चलत हैं और सुनत हैं अपन सबकी पसंद पे राम कुमार प्रजापति जी को गाओ भाव जो श्रृंगार लोकगीत।

भैया बहनरो अबे अपन सभी जने सुन रहे थे रामकुमार प्रजापति को गाव भाव जो श्रृंगार लोकगीत। तो भैया बहनरो जी भाई आज के रमतुला कार्यक्रम के लोकगीत। अब बात आउत है अगले रमतुला कार्यक्रम में अपन कौन कौन से लोकगीत सुन भी सुनत है उनकी एक झलकी। अगले रमतुला कार्यक्रम की पहली झलकी है रामनाथ अहिरवार को गाव भाव जो लोक भजन।

0: भैया बहनों, इन्हीं झलकियों के संगे आज को रमतुला कार्यक्रम संपन्न होत है। अगले रमतुला कार्यक्रम में अपन सभी जने फिर मिलवी अगले सोमवार खां। जब लो आज्ञा देव अपने आनंद भैया खां। जय राम जी की। पंच भैया रो अब अपन सभी जने सुन रहे थे अपनो पसंदीदा कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। ओ भैया बहनों, अगारू एक मौका की जानकारी सुनावी पर तना रोक के।
1: गठियावाद, गठुआवाद और घुटनों के दर्द से आप लंबे समय से पीड़ित हैं, तो निजात पाने के लिए संपर्क करें वैद्य रामचरण प्रजापति, खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फोन नंबर है 9993285161। अपने दर्द का उपचार पाइए वैद्य रामचरण प्रजापति से।
0: पंच भैया और बतकाव कर रहे थे मौका की जानकारी की। तो भैया ऐसे एक अपन किला ने वार्ता लेके आए हैं जो उनको विषय है ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों में रोग व कीट प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार जू। तो भैया सुने जा वार्ता।
2: इस गर्मी के मौसम में विभिन्न प्रकार की कद्दू वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं, जिनकी बुआई मार्च तक कर दी जाती है और उसमें अप्रैल के महीने से फसल उपज प्राप्त होने लगती है। लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत प्रकार के बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप भी उसमें होता है, जिसमें से बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ और मूर्छा रोग जिसको विल्ट बोलते हैं, इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और अगर इनकी समय पे उपचार न की जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस करते हैं, नुकसान करते हैं हमारी उपज को। तो उनकी देखभाल के लिए समय समय पे हम फसल का निरीक्षण करते रहें और जैसे ही बीमारी का प्रकोप देखने को मिले उसमें तुरंत हम रासायनिक दवाओं का या कुछ ऐसे जैसे नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं और भी कुछ नीम की पत्तियों का हम अर्क निकाल करके उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये समय समय पे 10-15 दिन के अंतराल पे अगर हम छिड़काव करते रहते हैं तो हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अगर सबसे पहले हम पाउडर मिल्ड्यू की

बात करें तो पाउडर मिल्डू पत्तियों के ऊपर किसान भाई देखते होंगे कि सफेद सफेद पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जो फसल की उपज को बहुत नुकसान करता है और पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करता है। यह बीमारी एक आम बीमारी है और ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए किसी भी सल्फर फंजीसाइड का अगर छिड़काव करते हैं 0.2% के दर से, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करते हैं और 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर देते हैं तो इस बीमारी से निजात मिल जाता है। दूसरी बीमारी की बात करें हम तो एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी लगती है। यह पौधे के जब शुरुआती अवस्था में ही, जब पौधा सीडलिंग अवस्था में होता है, नर्सरी में होता है, उसी समय यह बीमारी लगती है और यह एक फफूंद से बीमारी होती है जिसको पीथियम बोलते हैं। और इस पीथियम बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाई को चाहिए कि सबसे पहले भूमि का शोधन करें। भूमि का शोधन करने के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर को, 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 किलोग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद में या बर्मी कंपोस्ट मिले तो सबसे उत्तम है, उसमें मिला करके और 1 हफ्ते के लिए हम उसको ढक करके रख देते हैं जूट के बोरे से और उस पे 1 हफ्ते तक पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे कि जो ट्राइकोडर्मा के स्पोर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद उसको हम जब भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस मृदा में मिला देते हैं, मिला करके अच्छे से भूमि की तैयारी कर लेते हैं। तत्पश्चात हम बीजों का भी शोधन करते हैं। बुवाई से पहले बीजों को शोधित करके ही लगाना चाहिए। उसके लिए ट्राइकोडर्मा की 10 ग्राम मात्रा 50 ग्राम गुड़ में और 100 मिलीलीटर पानी में घोल करके और बीज को अच्छे से उसमें मिक्स करके छाया में सुखा करके उसके बाद बुआई करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो हम इस डैम्पिंग ऑफ बीमारी से निजात पा सकते हैं। तीसरी सबसे मुख्य बीमारी लगती है मुरछा डिजीज, जिसको विल्ट डिजीज बोलते हैं। यह बैक्टीरिया से और फफूंद से, दोनों से ही होता है और यह उस खेत में सबसे ज्यादा लगता है जहां पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। तो किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जहां भी सब्जी की फसल लगा रहे हों, ये कद्दू वर्ग की सब्जी की फसल लगा रहे हैं, वहां पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बीमारी के लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं अपना करके हम फसलों को अपने विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल को चक्री में बोना। जैसे कि हम अगर कद्दू वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो कोई ऐसी फसल लगाएं जिससे कि उस फसल में उस रोग का प्रकोप ना होता हो, तो ऐसा करके भी हम फसल को अपने हम बचा सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। नीम की खली इस बुंदेलखंड रीजन में बहुत बहुतायत से पाई जाती है और उस नीम की खली का अगर उपयोग करते हैं खेत में तो उससे भी मृदा जनित बहुत सारी बीमारियां होती हैं या सूत्रकृमि लगते हैं जड़ों में, तो उन सूत्रकृमि से या मृदा जनित बीमारियों से निजात हम पा सकते हैं नीम की खली का प्रयोग करके। बीज का शोधन मैंने पहले भी बताया, बीज का शोधन करने के लिए मैंने ट्राइकोडर्मा से बताया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे रासायनिक दवाएं भी उपलब्ध हैं मार्केट में, तो उनसे अगर उपचारित करके बीजों को बोते हैं तो हम उस उकठा बीमारी से निजात आसानी से पा सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट रसायन है कार्बोक्सिन प्लस थीरम। कार्बोक्सिन और थीरम का एक मिक्स उत्पाद आता है मार्केट में, उसको अगर बीज को शोधित करते हैं उससे तो हम फसल को अपने इस उकठा बीमारी से बचा सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं इन कद्दू वर्गीय फसलों में। कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले, जब पौधा छोटी अवस्था में सीडलिंग अवस्था में होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा लगता है रेड पंपकिन बीटल। शुरुआत की जो पत्तियां निकलती हैं उनको खा करके नष्ट कर देता है और इनकी संख्या बहुत होती है, तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाई अगर घरेलू उपाय करना चाहें तो नीम के तेल का या मट्ठा छाछ है, जो छाछ में थोड़ा सा हल्दी मिला करके अगर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहते हैं तो हम इस रेड पंपकिन बीटल से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आजकल मिट्टी का तेल तो नहीं मिल रहा है, नहीं तो मिट्टी का तेल जो राख होती है, घर में राख निकलती है, उस राख में मिट्टी का तेल मिला करके अगर पत्तियों पर छिड़काव कर दें तो उससे भी इस रेड पंपकिन बीटल से हम निजात पा सकते हैं। अगर इनसे भी निजात नहीं मिलती है
तो हम एक

0: के रसायन है साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन का 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल के हिसाब से अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इस रेड पंपकिन बीटल से आसानी से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा 2 और कीट लगते हैं, एफिड और सफेद मक्खी, माहू और सफेद मक्खी। सफेद मक्खी और माहू दोनों का ही जो पत्ती को नुकसान करने का तरीका है एक ही है, दोनों रस चूसते हैं पत्तियों का और उससे जो है दूसरे बीमारियों को भी वो न्योता देते हैं, जैसे कि बहुत सारे मोजैक विषाणु जनित बीमारियां होती हैं उनको भी वो न्योता देते हैं। तो इन 2 कीड़ों से बचाव के लिए मार्केट में नीम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, नीम का तेल है या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो नीम की निबौली होती है उसको कूट करके उसका पाउडर बना करके उसके अर्क को छिड़काव करते हैं तो उससे भी हम इन दोनों कीटों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा रसायन भी उपलब्ध हैं, जैसे इमिडाक्लोरपिड, थायोमेथोक्साम, एसिटामेप्रिड। इन रसायनों का उपयोग करके इनकी मात्रा होनी चाहिए 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पे तो इन दोनों कीटों से हम निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों यही रहा इन गर्मी के फसल में प्रमुख बीमारियां और कीट और उनका निदान।
1: अपन सब जने सुन रहे थे वार्ता ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों में रोग व कीट प्रबंधन। वार्ता कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार जू। और भैया बहनों देखो आज की नसीहत में बस इतनों के अभी के जो ऐसी रात है जिनके छाती में बाल नहीं होत, जब कहावत है कि भैया मुसीबत के समय अपन का छोड़ के गदबद दे दे, तो भैया ऐसे लोगों से अब उनका बच के रहने हैं। कैसे कहावत कही भी गई है छाती में बाल ना हो, वो इनसे सतर्क रहने हैं भैया बहनों। और अब हो रही है चलवी की बेरा, तो चलवी के पहला काल के कार्यक्रम बताया जाए। काल अपन सुने लोक मंजरी कार्यक्रम, वार्ता सुने बुंदेलखंड परिक्षेत्र में ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों की बढ़ती मांग डॉक्टर अमित कुमार सिंह से, आज की सीख में सुने छाती पे मूंग दरद। अपने तपन बतका हुई अब देव अपने आनंद भैया का विदा, पंचो राम राम।

आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा मेधावी पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। रिले करते हैं भोपाल केंद्र से सुर्खियों में।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार
1: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के

0: पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
2: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशे किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 1994-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था
1: जी।
2: ऐसे हर साल में कोई न कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर उसको, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ लेकिन सबने मिलकर श्रद्धालुओं ने राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
2: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वही नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं, कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका

0: के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी
1: जी।
0: मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड्स हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, तो वो

0: प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
0: डेफिनेटली होता है, क्योंकि लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की लेडी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहां आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है, जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
0: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वही अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि कि हमारे

0: राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेंपल भी है। और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी, आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम

0: महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। विजय सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: मीडिया नेटवर्क और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के सुर में अभी आपने सुना मेरी सनम फिल्म का गीत। धुन तैयार की ओपी नैयर ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था। अब सुनते हैं एस एच प्यारी के गीत को। फिल्म का नाम कश्मीर की गली।

एसएस बिहारी के गीत को अभी आपने सुना कश्मीर की कली फिल्म में। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी। धुन तैयार की ओपी नैयर ने। मजरू सुल्तानपुरी के गीत को आइए अब सुनते हैं राहुल देववर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम तीसरी कसम तीसरी मंजिल।

तीसरी मंजिल इस फिल्म में भी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था। लीजिए अब सुनिए कारवा।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना कारवां फिल्म का गीत। धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था। आइए फिल्म संगीत के अंत में सुनते हैं रूप तेरा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना असद भोपाली के गीत को। संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडिया मैप पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने

0: किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: For the season of खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि

0: आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आए।
1: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of vaccine.

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 7171 7116 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह के से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाए।

0: मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएंगे, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू हुई
1: जी
0: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
1: जी।
0: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा तो उसमें आग लगने वाली है
1: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
1: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
1: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए, ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है, तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, बट हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
1: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
0: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है

0: एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए है कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाईजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम दो एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया।

0: वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉकड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉकड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं। प्रशांत
2: जी, लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: धन्यवाद धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड गांधीनगर कई बार गया हूं। गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, कि सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिक सिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा, कपड़े में आग लग जाएगी और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, पानी डाले।

0: ये बहुत 24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
0: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं। तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन ले, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: हाँ, सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी भाई, विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सिहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बनके खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है। जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में, कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा
1: जी। जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को तो, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते कि वहां पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में

0: चलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार। नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं, और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है, आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा, अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखे, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है। तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
0: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से है, ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है

0: सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा मिनीचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस

मीडियम पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

अभी आपने सुना कारवा फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, संगीत दिया एडी वर्मन ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी का। इस गीत को सुनने के लिए पत्र भेजे आप सबने। ग्राम पनवाड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा और आपके परिवारजन। सरीला राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से राजू यादव, फूला रानी, विनीता यादव, सारेश यादव, अंजलि यादव, महेश्वरी देन यादव, सचिन कुमार यादव, निकिता यादव और पूनम गौतम। ग्राम परछा, तहसील सरीला राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से छोटे यादव, बलवान सिंह यादव, अनूप राजपूत, कुशल सिंह यादव।

ग्राम पंचायत सरसेन हरपालपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से उमेश कुमार प्रजापति और दीनदयाल कुशवाहा। ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। ग्राम शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन कविता संजय, राधा नामदेव, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई।

आनंद बख्शी के गीत को अभी आपने सुना कर्ज फिल्म में। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद किया था आप सबने। आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और नवीन शर्मा। बटिंडा रोड डवानी से राजेंद्र नगर, अंजू नागर, मोहित नागर और तानिया नागर। जिला पश्चिम सिंहभूम झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्मी और हिमाक्ष। बन्नी बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। देवरी भाटीपारा छत्तीसगढ़ से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और तानिया। दुर्गा कॉलोनी झांसी से राजू मिश्वाली, बबीता, सुभाष और डब्बू। ब्राह्मणगढ़ ठाकुरावाला से स्वयं सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरमूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मन भावन कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में अभी आपने सुना एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर को। धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत आनंद बख्शी का था। इस गीत को सुनने के लिए ईमेल पर पत्र प्राप्त हुए आप सबके। ब्रह्म पोस्ट खन्ना जिला महोबा उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश नामदेव, पुष्पा, मेघा, वर्षा, भूमि और दृष्टि। कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी, पूजा तिवारी, राम बिहारी, आशा, अभय और कार्तिक। सागर मध्य प्रदेश से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रोबिन। रोपड़ पंजाब से मीका, बलविंदर, जयतेग और हरदेव। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी, अंश और ऋषभ। रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, कपिल, मीनाक्षी, मनोहर बाई और प्रभुलाल। ग्राम अमलेश्वर से डोमर ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और गुड़िया। सनावर मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी, इद्रीस, नूर, इरफान, कासिम और हासिम। मोहाल दीवानपुरा राहत जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री और नीलम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत।

गीत वर्मा मलिक का था। इस गीत को पसंद किया था आप सबने। मणिनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साधना और निवान शर्मा। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिया नेवाद जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। विलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। आइए अब सुनते हैं अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को।

शिशिर कुमार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और पसंद किया आप सबने। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अनय, अनाया, सपना, शिवी, सोनाली, पेंटर बाबू, अशोक, अनिल, सोनी और सुदामा। ग्राम खकल, तहसील कोट, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आकाश विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा। एयरपोर्ट रोड, बन्ना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, देविका चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डेकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डेकेस्ट्रो। ग्राम मुन्ना, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। राजकोट, गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। नागपुर, महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक।

एक संदीप और संजय रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहानी और सुनीत सहानी। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं नमक हलाल फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, संगीत दिया बप्पी लहरी ने और गीत प्रकाश मेहरा का।

फिलहाल इस फिल्म में भी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों को। दीन दयाल की बप्पी लहरी ने और गीत प्रकाश मेहरा का था। इस गीत के लिए ईमेल पर पत्र प्राप्त हुए आप सबके। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, मूरखेड़ा पीतरामल उज्जैन से विनोद नेहा जैन, दीपक मयंक और चेतन, कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से गजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, जिला मुरादाबाद ग्राम दिलहारपुर से मोहम्मद फरमान सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। लीजिए अब सुनते हैं नदिया के पार फिल्म में हेमलता और साथियों को।

अभी आपने सुना नदिया के पार फिल्म का गीत, आवाज हेमलता और साथियों की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, पसंद किया था आप सबने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, अविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़ और प्रमिता गायकवाड़। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरीन अंसारी, आसमा और मोहम्मद कैफ अंसारी। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े और उत्तम जमदाड़े। आइए मन

कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत। धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने और गीत अंजान का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनी, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। धरोनी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साहा पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। डाबरी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सरानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडिया पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रिले करते हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर